सुनो लो कि सेवा में हमारा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। खुद नाफंद कहे या कहे खुय नख्त, आज है सातरदा हो चला है त्वेई मैं त्वेई दयसंत ससंत। मैं हूं आपका सेवक विजय सरफी और आज की रात हम रहेंगे आप लोगों के साथ काफ़ी देर तक। हाँ हाँ, काफ़ी देर तक रहेंगे हम आप लोगों के साथ। यही आशा करते हैं कि हर रोज की तरह आज भी हमारा हिस्सा का कार्यक्रम जो आज हम पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, अब से लेकर सुबह में 6 बजे तक सुनकर आप सब अवश्य पसंद भी करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आपको लेकर आज के प्रोग्राम में लोकल गाने के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हमारा आगे जारी करते हैं। तो अब की बार ये खूबसूरत सा बयान आप सभी के नाम प्रस्तुत किया जा रहा है आज की रात्रि में ओवर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए। एक प्रोग्राम जो लाइव एंड डायरेक्ट पेश होते हैं स्पर्ता पारक उस 353 अमर एफएम का पता है। तो ये गीत आप सभी के नाम लाया जा रहा है आज की प्रोग्राम में।

0: हम बताइए ना शुरुआत में आप लोगों से कि सभी तरीके के गाना होगा आशी कार्यक्रम में। सोका, मेरेंगे, कौना पोकू, बिगी पोकू, सभी रकम के पोकू होगा भैया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आपको लेकर अगला गाना की ओर। आज के प्रोग्राम में हम पेश करते हैं एक प्रोग्राम जो अमर एफएम नई दलहन के जरिए पेश होते हैं, लाइफ एंड डायरेक्ट फन स्पर्त परक उस डेर 353 हमारा पता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आपको लेकर अगला गाना की ओर। आज के कार्यक्रम में हमारा सभी संगीत प्रेमियों के नाम पेश होते हैं।
1: That's a cock and fire fortified. Running boat, just run back. We are in the zone, ready to commit murder.

चलिए सुनो, अब की बार हम एक गीत पेश करते हैं आप सभी सुनोल के नाम, खास करके उन लोगों के नाम जो इस वक्त के साथ हमारा हिस्सा का प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और हमारा हिस्सा का प्रोग्राम से लुफ्त उठा रहे हैं। तो आप सभी के नाम ये खूबसूरत सा बयान पेश होते हैं। इसको आप देखें जैसे रेगे या बॉबलिंग, जैसे आप समझे वैसे इसको आप स्वीकारिए और ये गीत के साथ मजेदार नाचिए, झूमिए, खाइए, पिए, सब कुछ हिसाब से। ये गाना आप सभी के नाम।

अमर एफएम के प्रोग्राम से आप सब जुड़े हुए हैं और आपका मन चाह रेडियो स्टेशन अमर एफएम पे आप सब चून किए हुए हैं। रात्रि के प्रोग्राम आप सभी के नाम पेश होते हैं। मैंने कहा ना सातरदा है त्वे मई और रात्रि के कार्यक्रम आप सब सुन रहे हैं, तो एक से एक अच्छी अच्छी बेहतरीन गाने आप सभी के नाम हम पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं अमर एफएम के जरिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में अगला गाना की ओर। आप सभी संगीत प्रेमियों के नाम हम पेश करते हैं।

आप सबका मन चाह रही जो स्टेशन है अमर एफएम जनता की आवाज, अमर एफएम पे आप सब चुन के हुए हैं, तो क्यों ना कुछ और गाने आप सभी के नाम हम पेश कर दे। तो लीजिए ये गाना आप सभी के नाम पेश होते हैं, एक काफी हॉट चटनी है फ्रॉम त्रिनिडाड एंड टोबेगो। इसको हम लोग भी मिल करके सुनते हैं आज की प्रोग्राम में पेश होते हैं।

0: आपको सुना रही थी रासी का दीनदयाल जी की बोले हमके जंगलिया में ना मार ना मार हमके जंगलिया में। अच्छा तो कहीं अंत्य ले जाए के कुछ खाना पीना के बंदोबस्त कर दे तो मेरे ख्याल से ये और अच्छा होगा। चलिए गाना की ओर हम आप सबको लेके चलते हैं।
1: अरे नंगे नचनिया

चलिए अब की बार हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में रेशमा राम रूपजीव को और साथ में है अमित। इन दोनों की आवाज में ये खूबसूरत सा चटनी सॉन्ग आप सभी के नाम लाया जा रहा है ओवर द पावर ऑफ लव अमर एफएम के जरिए।

अच्छा तो मेरे समधीन हमार बड़ी प्यारा, सबके तो समधीनिया और समधी भाईवा तो मेरे ख्याल से प्यारा प्यारा सबकी है ना, तो एक से एक अच्छी अच्छी गाने आप सभी के नाम हम पेश करते हैं। तो चलते हैं बढ़ते आप सबको लेकर अगला गाना की ओर, आज के प्रोग्राम में मिलकर सुने गुने और गुनगुनाइए।

और ये रहा सुनालो आज के कार्यक्रम में मिस्टर जॉन मुकम सिंह की आवाज में हमने पेश किया आप सभी सुनालो के नाम। तो अब की बार हम शामिल करते हैं म्यूजिक ग्रुप हारोल्ड एंड फ्रेंड्स वॉल्यूम 5 से ये खूबसूरत सा बयान निकाल करके आप सभी संगीत प्रेमियों के नाम हम पेश करते हैं आज के कार्यक्रम में। मिल करके सुनते हैं एक प्रोग्राम है जो आप सभी सुनालो की सेवा में पेश होते हैं लाइफ एंड डायरेक्ट। तो चलते हैं मिलकर ये गीत आप सभी के नाम हम पेश करते हैं।

चलिए सुनो, प्रोग्राम हम और आगे जारी करते हैं और अब की बार एक धमाका सॉन्ग हमने चुन कर रखे हुए आप सभी के नाम। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी हमारा सभी संगीत प्रेमियों के नाम हम पेश कर देते हैं। तो ये गाना आप सभी संगीत प्रेमियों के नाम लाया जा रहा है, मिल करके सुनते हैं। न सिर्फ सुनिए, नचिए भी। अच्छा, तो अश बिलीव आप सभी के नाम।